अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

तर्जनम् भवबीजानाम् अर्जनम् सुखसम्पदाम् तर्जनय्यमदूतानाम् राम रामेति गर्जनम् श्रीसीतारामनाम महाराज की। संत बड़े परमारथी भेष धरे यमदूत राम नाम की गर्जना भाग जाए यमदूत श्री सीताराम नाम महाराज की। श्री राम लला भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज के, जय जय श्री राम। जै जै।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

श्री गोविंद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि निर्माता ब्रह्म की योनि को मैं ही गर्भस्थ करता हूँ एवं विविध प्रकृति गुणों के प्रभाव से अव्यय जीव इस भौतिक देह को धारण करते हैं।

श्री भगवान कहते हैं कि निर्मल प्रकाशक सत्वगुण पापों से मुक्त करता है, जबकि रजोगुण राग वैतृष्णा तथा तमोगुण आलस्य एवं प्रमाद उपजाता है। जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में किसी एक गुण की प्रधानता के कारण देहधारी के कर्म स्वभाव एवं अंतगति में परिवर्तन होते हैं।

श्री गोविंद कहते हैं कि इन तीन गुणों को पार करने वाला नर ही मोक्ष का अधिकारी बनता है। श्री भगवान ऐसे त्रिगुणातीत के लक्षणों का वर्णन करते हैं।

जटायु से रावण द्वारा सीता हरण की जानकारी मिलने पर दोनों भाई ऋष्यमूक पर्वत के समीप पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी से भेंट होती है। हनुमान जी दोनों भाइयों को सुग्रीव, जामवंत और समस्त वानरी सेना से मिलवाते हैं। श्री राम अपने आने का प्रयोजन बताते हैं। श्री राम की शरण में आए हुए सुग्रीव अपनी वानरी सेना को माता सीता की खोज के आदेश देते हैं, परंतु सागर को लांघकर लंका जाना ये कार्य तो केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं। जामवंत, अंगद और वानरी सेना हनुमान जी को जागृत करते हैं।

0: पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुब्रता नामना सत्यवती नाम ऋचि के प्रतिपादिता सशरीरा गता स्वर्गम भर्तारं मनवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी।
1: वाल्मीकि रामायण अनुसार मुनि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को अपनी बड़ी बहन सत्यवती की कथा सुनाई थी कि अपने पति के स्वर्ग सिधारने के साथ सत्यवती पति का अनुगमन करती सशरीर स्वर्ग गई और वह कौशिकी नामक नदी के रूप में परिणत हो गई। कालांतर में वही कौशिकी कोसी कहलाई।
2: सप्त सिंधु, सप्त गोदावरण, सप्त गंगम और सप्त गंडकी की तरह कौशिकी भी सप्त कौशिकी है। इनमें इंद्रावती, सुनकोसी।

0: ताम कोसी, लिक्ष कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी और तमोर कोसी। इन सप्त कौशिकी की धाराओं का क्षेत्र पश्चिम पूर्व 264 किलोमीटर और दक्षिण उत्तर 160 किलोमीटर तक फैला है।
1: विनोद जी, तो ये सातों नदियाँ यानी धाराएं हिमालय के उच्च शिखरों से उतरी हैं।
0: तमोर का उद्गम कंचनजंघा, तामा कोसी का गौरी शंकर, दूध कोसी का उद्गम मकालू शिखर, अरुण कोसी की कुछ सहायिकाओं का उद्गम सागर माथा यानी
1: एवरेस्ट शिखर, संसार के शिखरों में सर्वोच्च।
0: शोभा जी, वैसे बड़ी प्रवाह धारा तो अरुण कोसी की है, फिर भी कोसी सुन कोसी यानी स्वर्ण कोसी की ही धारा मानी जाती है। ये स्वर्ण कोसी तिब्बत से उतरती है, त्रिवेणी के पास सातों कोसी मिलकर महाकोसी कहलाती है, एक हो जाती है।
1: लेकिन विनोद जी, हमें वराह क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना है, नाव इंतजार कर रही है।
0: हाँ, देख रही है ना, प्रवाह के विरुद्ध हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी नहीं, हमारी नाव आगे बढ़ रही है। और विनोद जी, फिर वो युवा क्या जो प्रवाह के विरुद्ध आगे न बढ़ सके?
0: जी हाँ, कोसी के दोनों किनारों के प्राकृतिक दृश्य तो देखिए, कितना मनभावन है। और जानती हैं शोभा जी, वराह पुराण अनुसार सप्त कोशी क्षेत्र 21 तीर्थों का स्थान माना गया है।
1: 21 तीर्थ?
0: जैसे जल बिंदु, विष्णुधारा, अग्निसर, ब्रह्मसर, विष्णुसर, मत्स्यशिला, विष्णुपद आदि। विष्णुधारा वही कोका मुख है और विष्णुपद पास ही तो है। कहते हैं यही वराह भगवान ने पाताल से पृथ्वी को लाया था।
1: वो वहाँ वराह मंदिर,
2: यो वराह क्षेत्र हो। यहाँ धेरै टाढा टाढाबाट दर्शन गर्न मानिसहरू आउँछन्।
0: महाकोशी के बाएं तट पर ही वराह क्षेत्र और कोकामुख दो तीर्थ हैं। इनकी चर्चा तो महाभारत में भी आई है।
3: कोकामुखे विगाह्याथ गत्वा चांचलिकाश्रमा शाखभक्षास चीरवासा कुमारी निंदते दशा।
0: शोभा जी, सप्त कौशिकी की धाराएं मानो सप्त लोक के प्रतीक सात स्वर्ग मार्ग हैं, जो वस्तुतः स्वर्ग से उतरते हैं। यहाँ से यानी वराह क्षेत्र से नीचे मुनि विश्वामित्र का आश्रम कुशहा है, उनकी तपोभूमि।
1: क्यों नहीं, ये स्थान ही साधना और तप के योग्य है। लेकिन विनोद जी, एक बात समझ में नहीं आई, कोसी जैसा जल प्लावन का दृश्य, बाढ़, कटाव, इतनी तबाही अन्य बड़ी नदियों में नहीं दिखती है।
0: ये जान लीजिए कि नवंबर माह में कोसी का जल निकास 18,000 घनफुट प्रति सेकंड, किंतु वर्षा काल में 3,00,000 घनफुट प्रति सेकंड देखा गया है। इस क्षेत्र में वर्षाकालीन बाढ़ की ऊंचाई अन्य दिनों की साधारण सतह से 40 फीट तक की ऊंचाई बढ़ जाती है, किंतु 1927 की बाढ़ में 56 फीट ऊंचाई बढ़ गई थी। इस तरह इस बाढ़ का निकास 7,00,000 घनफुट प्रति सेकंड बढ़ गया था।
1: मगर इतनी तेज रफ्तार और इतना अधिक पानी?
0: गंगा नदी का उद्गम समुद्र सतह से 10,300 फीट ऊंचा है, सिंधु का उद्गम 16,000 फीट, मगर कोसी का उद्गम समुद्र सतह से 18,000 फीट ऊंचा है। इसके अलावा सप्त कौशिकी के हिमालय क्षेत्र में 170 इंच वर्षा होती है, फिर हजारों वर्ग किलोमीटर ग्लेशियर का और हजारों वर्ग किलोमीटर वर्षा का पानी समेट कर धाराएं त्रिवेणी पहुंचती हैं।
1: ओह, तभी तो।
0: और कोसी की प्रत्येक धारा दो पर्वतों की तंग दरार से बहती उतरती है। वर्षा काल में जल प्रवाह की गति प्रति घंटा लगभग 25 किलोमीटर है।
1: विनोद जी, तीव्र धारा के कारण ही कोसी गांव बस्तियों को उजाड़ती, जहां तहां ताल तलैया खोद देती थी। कहीं कहीं तो 60-70 फीट गहरे कुंड जैसा। जानते हैं, मेरे मामा जी कहते हैं कि ये ताल तलैया उन्हें लखपति बनाते थे।
0: लेकिन मछली के सिवा क्या उपजा पाते होंगे मामा जी?
1: मखान यानी मखाना, चाय के साथ नाश्ते में या खीर बनाकर, जैसे भी खाइए, 80-85 रुपए प्रति किलो मखान। फिर खेतों में जूट, तंबाकू, देश विदेश में बेचकर लाखों रुपए कमाते हैं व्यापारी लोग।
0: ये एक बात हुई, लेकिन गड्ढों में जहाँ जल जमा हो जाता था, वहाँ मच्छरों का उपनिवेश बस जाता था, फिर मलेरिया, कालाजार, पीली यानी पेट निकल जाने वाली बीमारियों का गढ़। इनके अलावा बालू का टीला बना देना, मीलों तक उर्वर भूमि को वीरान बना देना कोसी के बाएं हाथ का खेल था।
1: मैं मानती हूँ कोसी सब में आगे रही है, उद्गम स्थान की ऊंचाई में सर्वोच्च, वर्षा में अपूर्व, तो तीव्र धारा द्वारा

0: उजाड़ने में बालू भर देने में भी प्रथम।
1: कोसी का ये निर्मम खेल 100-200 सालों से ही नहीं बल्कि हजारों सालों से जारी है। सन 1300 ईस्वी के लगभग मिथिला भूमि के रक्षार्थ कोसी को रोकने के लिए एक विशाल बांध बांधा गया था। 80 से 100 फीट चौड़ा, 20 से 30 फुट तक ऊंचा और 80 किलोमीटर तक लंबा। कहते हैं मिथिला के शासक हरि सिंह के मंत्री वीरेश्वर ने बनवाया था। उसी के नाम पर बांध का नाम वीर बांध था। ये पश्चिमी तटबंध था। लगता है समय के थपेड़ों और कोसी की तलवार धार से भी तीव्र चोट से वीर बांध क्षत विक्षत हो गया, किंतु प्रतीत होता है इसकी प्रेरणा से भारत सरकार ने यह भीमनगर स्थित बराज बनाने का निश्चय किया।
0: सच, कोई 700 साल पूर्व इतने विशाल बांध का निर्माण, ऐसा मनुष्य? भैसा संग मनुसुबा के बहनों बजर सन गाथे,
1: ये तो लोकगीत है, जरा खुलकर तो सुनाइए।

0: शोभा जी, प्राचीन पुण्य तीर्थों के दर्शन, श्रवण और मनन तो आपने कर लिए। नवयुग का नया तीर्थ देखने, देश में हीराकुंड, भाखड़ा नंगल, मयूराक्षी, दामोदर और कोसी योजना का निर्माण योजना अनुसार हुआ था, तो हम नीचे उतरे कोसी बराज को देखने निहारने।
1: विनोद जी, त्रिवेणी संगम से चतरा लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करती कोसी नीचे उतरती थी और फिर यत्र तत्र कोसी अपनी धाराओं को बिखेर देती थी, तबाही मचा देती थी।
2: सन 1951 जुलाई के आखिरी सप्ताह में कोसी की बाढ़ संपूर्ण सहरसा का सर्वनाश करने लगी तो 20 अगस्त को हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू ने बाढ़ क्षेत्रों का निरीक्षण किया और कोसी को बांधने, उसे नियंत्रित करने का निश्चय किया।
3: कोसी नदी नेपाल स्थित वराह क्षेत्र, कुसहा और चतरा स्थानों से होती हुई भारत में बिहार के सहरसा जिला अंतर्गत वीरपुर और भीमनगर स्थानों पर उतरती है।
4: भारदा यानी भारदह नेपाल राज्य का गांव है। यह भीमनगर से पश्चिम 8 किलोमीटर दूर कोसी के दाहिने तटबंध पर बसा है। यह निर्मली से 41 किलोमीटर, कुनौली से 16 किलोमीटर पूर्वोत्तर कोण में है।
2: इसी भारदा में बराज बनाने की योजना स्वीकृत हुई। बराज का प्राथमिक कार्य 14 जनवरी 1955 को प्रारंभ हुआ और बराज लगभग 4 वर्षों में पूरा हो गया। 1963 के 31 मार्च को कोसी की धारा मोड़कर बराज के विवर द्वार में बहा दी गई, जिसका विधिवत उद्घाटन 24 अप्रैल 1965 को नेपाल नरेश द्वारा संपन्न हुआ।
3: कोसी क्षेत्र के निवासियों ने शोक नदी कोसी के उत्पीड़न से मुक्ति की सांस ली, नए जीवन की शुरुआत हुई।
4: 1954 में कोसी में भयानक बाढ़ आई थी, जिसका प्रतिक्षण जल रिसाव 8,55,000 घनफुट था। तदनुसार जल निस्सरण की गति प्रति सेकंड 9.5 लाख घनफुट थी। अतः बराज में 56 जल द्वार बनाए गए।
3: सहरसा और पूर्णिया जिलों में बहने वाली कोसी की पूर्वी नहर बराज के नियंत्रण गृह से सटे दाहिनी ओर से निकाली गई है। कोसी की यह पूर्वी मुख्य नहर 7 जल विवर द्वारों से बहाई गई है।
2: इसका प्रत्येक विवर द्वार 40 फीट चौड़ा है और नहर अपने उद्गम स्थान पर 360 फीट चौड़ी है। इस पूर्वी नहर की लंबाई लगभग 41 किलोमीटर है, जिससे 5 बड़ी शाखा नहरें निकाली गई हैं। फिर इन 5ों से बहुत सी नहरें निकली हैं।
3: यदि पूर्वी मुख्य नहर के साथ इनके द्वारा बहाई गई तमाम नहरों की लंबाई नापी जाए तो कुल मिलाकर 3,020 किलोमीटर होगी।
4: पूर्वी और पश्चिमी तटबंध का कार्य बराज निर्माण के साथ 1955 में आरम्भ होकर दोनों ओर कोई 120 किलोमीटर लंबा मिट्टी का तटबंध 1959 में पूरा कर लिया गया। इसके निर्माण में जन सहयोग का बड़ा हाथ रहा। भारत सेवक समाज, ग्राम पंचायत, स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों

0: छात्रों ने, दूर दूर के निवासियों ने श्रमदान का अनूठा उदाहरण उपस्थित किया था।
1: श्रमदानियों में मधुबनी जिले के पलवार ग्राम के निवासी 75 वर्षीय श्री घनानंद झा और सहरसा के एक प्रमुख समाज सेवी श्री वैद्यनाथ मेहता आज भी साक्षी हैं। यादों के पन्ने खोल रहे हैं श्री वैद्यनाथ मेहता।
2: जनसहयोग का उपलब्ध यही हुआ कि जमीन लोगों ने स्वतः दिया। आपको तजुब लगेगा कि जिनकी जिनका घर जिनकी संपत्ति बांध के भीतर में पड़ती थी और अभी है, वो जानते थे कि कोसी के तटबंध हो जाने के बाद कोसी की सारी विभीषिकाएं तटबंध के भीतर में रहेगी, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने सर पर मट्टी काट करके जनसहयोग में श्रमदान किया। बांध उसी साल शुरू हो गया 14 जनवरी 1955 को, और श्री बाबू के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था।
3: पश्चिमी तटबंध बराज के पश्चिमी किनारे पर स्थित भरदा से आरंभ होता है कनौली तक सहरसा जिले में, आगे हरपुर डगमरा आदि पार करता मधुबनी जिले में प्रवेश करता है।
4: तटबंध के दाहिने किनारे मधुबनी जिले के बाजूबंद बनगांव और भुता गांव मिलते हैं। वहां से तटबंध निर्मली तक आता है।
5: निर्मली से 12 किलोमीटर पर स्थित डुमरा गांव के निवासी, जहां पहले केवल पटुआ की खेती करते थे, उन्हें पटुआ का साग मयस्सर होता था मड़ुआ की रोटी के साथ, लेकिन अब तो मन चाही फसल उगाने लगे हैं, बाढ़ का कोई डर नहीं। श्री बच्चेलाल मिर्धा एक छोटे किसान के शब्दों में,
6: हमरा सबका अधिकतर धान किछ गरमा किछ जल्दी किछ मड़ुआ ये फसल हमरा सबका हुई है।
4: डुमरा गांव के ही श्री सीबू राउत,
7: धान गहूँ जल्दी गरमा मड़ुआ ये फसल सब उपजावे हमारा का।
3: वहीं पास ही एक बड़ुआर गांव है, बड़ी बस्ती है। आप हैं वहां के किसान श्री रामचरित्र पासवान।
8: कोसी बांध भेला से हमरा सबके बहुत सुख सुविधा है। ई सब पहिने हमरा सबके सुगर जानवर ई सब बहुत तंग करै छलै, एकोटा फसल नहीं हुआ दै छलै। जहिया से बांध भेल है तहिया से हमरा सबके बहुत सुख सुविधा है, और वो जानवर जते छलै से एकोटा जानवर आब नहीं अठिन है।
4: वही बाजूबंद के पास ही तटबंध पर स्थित विश्वकर्मा मोड़ है। यहाँ के खेतों में कुछ महिलाएं काम कर रही हैं, तो कुछ घर जाने के लिए पड़ोसियों का रास्ता देख रही हैं। कोसी गीत मानो रस बस गया है।

0: कोसी बराज और तटबंधों के पहले तथा बाद की स्थिति बताते हुए नेपाल स्थित सप्तरी जिला पंचायत के सभापति श्री सुरेंद्र झा।
1: जब तक कोसी प्रोजेक्ट यहाँ पर नहीं था तो पूरे चतरा से लेकर के और वीरपुर तक पूरा जंगल में और बालू ही बालू था, लेकिन कोसी प्रोजेक्ट के होने से और पश्चिमी तटबंध हो जाने के कारण आज चौतरफी विकास हुआ है और हम लोग काठमांडू काकरभिटा से काठमांडू सीधे पहुंच जाते हैं। ये भारत और नेपाल का प्रतीक जो बैरेज है उससे दोनों देश को ज़्यादा ही ज़्यादा फायदा हुआ है।
0: खेती बाड़ी की चर्चा करते हुए श्री झा बता रहे हैं,
1: पहले तो वही जंगले जंगल और बालू, खास करके लोग पाट उपजाते थे यहाँ भी और इंडिया के सहरसा डिस्ट्रिक्ट में भी यही खेती था, लेकिन कैनाल के चलते आज सब जगह हरियाली हरियाली है, धानमय हो गया है और लोग आज कोई भी हो गरीब से गरीब आदमी भी दोनों टाइम चावल खाता है, ये कोसी प्रोजेक्ट का ही देन है।
2: विनोद जी, देख रही हूँ मशीन और मनुष्य ने कोसी की विकराल धारा को सिमट कर बराज के सीमित द्वार से बहने के लिए विवश कर दिया है।
3: शोभा जी, जान लीजिए कि कोसी नहरों और तटबंधों से बिहार के पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा जिलों को बाढ़ सुरक्षा और सिंचाई सुविधा मिली, तो नेपाल के अंतर्गत बड़े भूभागों को भी पटवन की सुविधा तथा बाढ़ से सुरक्षा मिली। नेपाल के चतरा, धरान, विराटनगर, दुब्भी, इनरवा और रंगोली आदि क्षेत्रों की लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई संभव हुई।
4: भारत सरकार ने चतरा नहर, बिजली घर, अस्पताल, स्कूल, सड़कें आदि निर्माण कर नेपाल को

0: उपहार स्वरूप प्रदान किए।
1: और इस प्रकार बिहार और नेपाल के करोड़ों किसानों ने शोक नदी कोसी के उत्पीड़न से मुक्ति की सांस ली।
2: नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई सुविधा की चर्चा करते हुए बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख श्री राम नरेश प्रसाद सिन्हा,
3: 65 से पूर्वी नहर प्रणाली से सिंचाई की सुविधा भी जाने लगी थी और उसके बाद से इस क्षेत्र में जो प्रगति हुई है और इस क्षेत्र का जो कायाकल्प हुआ है, इसकी कल्पना केवल वही लोग कर सकते हैं जिन लोगों ने कोसी में शुरू में 1954 से ही काम किया हो। मुझे यह कहने में बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है कि मैं एक उन लोगों में से हूँ जो कि कोसी के शुरुआती दिनों में ही यहाँ आया था।
0: 20-25 वर्षों तक नहरों से समुचित सिंचाई हुई, किंतु अब पटवन में बाधा होने लगी और तटबंध टूटने फूटने लगे, कारण बताते हुए अभियंता प्रमुख श्री सिन्हा।
3: जहाँ तक नहरों के सवाल है, नहरों भी की पूर्ण क्षमता के अनुसार सिंचाई उपलब्ध नहीं करा पाई जा रही है। इसमें भी सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि कोसी नदी में इतना अधिक सिल्ट आता है कि किनाल सब जगह सिल्ट से भर गया है। किनाल, मुख्य नहर, वितरण प्रणाली सभी में सिल्ट का इतना अधिक जमाव हो गया है कि नहरों की जो क्षमता थी वह क्षमता काफी कम हो गई है।
1: कोसी बहुधा 35 वर्षों पर अपनी धारा बदलती रही है। मुख्य कारण मुहाने पर बलुआही मिट्टी का भारी जमाव।
2: जब कभी कोसी ने अपना धारा मार्ग बदला तो तबाही के दिन दिखा दिए, बाढ़ का रोग शोक फैला दिया, फसलों को, गांव बस्तियों को बर्बाद कर दिया।
0: किंतु बराज बना, तटबंध बने, नहरें बनी तो बाढ़ सुरक्षा मिली, लेकिन बलुआही मिट्टी नहीं रुक सकी, क्योंकि मिट्टी और कंकड़ियों से निर्मित पहाड़ों के दरमियान कोसी गुजरती उतरती है और संग लाती है बलुआही मिट्टी का अंबार। कोसी योजना मुख्यतः बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से बनी थी और अभी तक योजना कारगर साबित हुई, किंतु कोसी नदी द्वारा सिल्टिंग की समस्या ने पटवन व्यवस्था पर चोट करना शुरू कर दिया है। कोसी की तुलना चीन की वांगो नदी से की गई है, जो अपने वेग में हर साल 10 सेंटीमीटर सिल्ट लाती है और चीन के अभियंता प्रत्येक 10 वर्ष पर किनारों को 1 मीटर उठाते रहते हैं, फिर उनका तटबंध भूकंप प्रूफ है।
1: पूर्णिया सिंचाई प्रमंडल के प्रभारी श्री शिवशंकर सिन्हा कोसी नहरों से सिल्ट हटाने की बात के साथ साथ कुछ अन्य उपाय बता रहे हैं।
4: किसान को भी अपने क्रॉप पैटर्न्स, फसल का जो फसल लगाने और बोने का, काटने का जो समय है उसको बदलना पड़ेगा। ज्ञातव्य है कि नदी सिल्ट लाती है प्रायः बाढ़ के समय में। असल नहर को उस समय अगर हम लोग बंद कर छोड़ दें और जो वर्षा होती है उससे किसान अपने खेत में फसल लगावें और काटें, और जब नदी में सिल्ट नहीं आता, नदी जब सिल्ट नहीं लाती है उस समय नहर का संचालन करें और वे किसान अपने क्रॉप पैटर्न्स को बदलें और उस समय उस फसल को लगाएं, हाई यील्डिंग बैलेंस की वैरायटी का फसल लगा दें, जैसे केला लगाया जा रहा है और बहुत ऐसा क्रॉप्स है जिसको उस समय लगाया जाता है जिस समय नदी में सिल्ट नहीं आती है, उस समय नहर में हम सिल्ट फ्री वाटर दे सकते हैं।
2: मिस्टर बुकनन एक प्रसिद्ध सर्वेक्षक जिसका समय 1809-1810 रहा है, उसने अपनी पूर्णिया रिपोर्ट में कोसी धाराओं की गतिविधियों का प्रमाणिक ब्यौरा उपस्थित किया है।
0: मिस्टर बुकनन के अनुसार सन 1704 से 1735 तक कोसी सौरा नदी की धारा से मिलकर फारविसगंज, रजोखर, गढ़बनैली, पूर्णिया और कटिहार होकर मनियारी के पास गंगा में मिलती है।
1: 1737 में ये सौरा धार से पश्चिम हट गई। 1770 में ये और पश्चिम खिसकी, सरसी, रंगपुरा होते हुए काढ़ा गोला आकर गंगा में गिरने लगी।
2: 1807 से 1838 तक ये धमदाह होते हुए कुरसेला में गंगा से मिलती थी। फिर 1875 से 1892 तक कोसी श्रीपुर, मुरलीगंज और प्रतापगंज होकर कुरसेला में गंगा से संगम करने लगी।
0: 1922 से 1937 तक यह भपटियाही, सुपौल, नौहट्टा और वनगांव होकर बहने लगी। 1951 में भी कोसी यहीं प्रवाहित थी। कोसी युगों से सहरसा और पूर्णिया में बिखरी हुई केश राशि की तरह विविध धाराओं में बटती, मनमाने ढंग से बहती रही। यह भाव लोक जीवन में कीट बनकर फूट पड़ा।

0: सुपौल से पश्चिम होकर आगे दक्षिण में जो दो धाराएं फूटती हैं उनमें पश्चिमी धार का नाम पुरैन है। इसी पुरैन धार के किनारे कई प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों के भग्नावशेष आज भी विद्यमान हैं।
1: सुपौल नगर के दक्षिण कर्णपुर स्थान, कहते हैं अंग देश के राजा दानवीर कर्ण का ये कभी प्रसिद्ध नगर था। आगे नौहट्टा मुगल कालीन नगर है।
2: पुरैन धार आगे धरहरा, चंद्रायण और महिषी को छूती बहती थी। महिषी यानी प्राचीन माहिष्मति ग्राम, जहां महान विद्वान मंडन मिश्र और शंकराचार्य का सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था।
1: कहते हैं जब शंकराचार्य महिषी यानी माहिष्मति पहुंचे तो उन्होंने एक पनिहारिन से मंडन मिश्र के घर का पता पूछा। पनिहारिन ने संस्कृत में उत्तर दिया,
3: जगत ध्रुवम स्यात् जगदत ध्रुवम स्यात् कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्थ नीलांतर सन्निरुद्धा जानीहि तन मंडन मिश्र धाम।
0: शंकराचार्य और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ मंडन मिश्र की पत्नी भारती की मध्यस्थता में हुआ। अंत में मंडन मिश्र ने पराजय स्वीकार ली और शंकराचार्य का शिष्यत्व ग्रहण कर वे सुरेश्वराचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए।
1: इसी महिषी ग्राम में रुद्र तारा देवी का एक प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है और पास ही है एक ऐतिहासिक बौद्ध काल की स्मृतियों को समेटे ग्राम वनगांव। मध्यम निकाय और महाबग्गो के अनुसार भगवान बुद्ध अपने 1200 शिष्यों के साथ अंग देश से चारिका करते हुए यहाँ पधारे थे। अंगुत राय का यही आपन निगम है।
2: मिथिला प्राचीन काल से गौरवान्वित रहा है। यहाँ की बालिका बबीता और पुष्पा को वैसे तो देश की तमाम नदियों से प्यार है, किंतु यहाँ के जल से कुछ विशेष लगाव है लोकगीत के स्वर में।

0: पूर्णिया का एक विशेष इतिहास रहा है। कहावत है, जहर खा न माहुर खा, मरना हो तो पूर्णिया जा। निसंदेह पूर्णिया इसे कभी चरितार्थ करता था, किंतु कोसी द्वारा बराबर धारा बदलने के कारण कभी दलदल तो कभी बालू के अंबार लगे, और जब धारा बदली तो फसलों का लहलहाता समुद्र बिहसता दिखा।
1: तभी तो पूर्णिया के विभिन्न मेले सुप्रसिद्ध हैं। फॉरबिसगंज का मेला, गुलाबबाग का मेला, मदनपुर का मेला, खबासपुर का मेला और भी कई मेले जो समृद्धि के प्रतीक थे।
2: साहित्य सर्जना में भी पूर्णिया पीछे नहीं रहा। पर्ति परिकथा, मैला आंचल आदि आंचलिक उपन्यासों तथा कथाओं के अमर लेखक स्वर्गीय श्री फणीश्वरनाथ रेणु, नाटककार और कवि स्वर्गीय द्विज देनी यानी पंडित राम देनी तिवारी, विद्वान आलोचक और लेखक स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु तथा अनूपलाल मंडल सरी के नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेंगे।
1: आज भी साहित्य साधना में निरत पूर्णिया के 80 वर्षीय कवि श्री नारायण वर्मा और 75 वर्षीय श्री तेज नारायण, कमला प्रसाद बेखबर आदि जाने अनजाने बहुत सारे कवि और साहित्यकार हैं।
0: यानी कौशिकी की तिब्बत की भूमि से आरंभ और गंगा संगम तक की ये पूरी कहानी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि जीवन वृतांत के अनेकों परिच्छेदों की तरह इसकी अनेक धाराएं लुप्त हो गई हैं या गौन पड़ गई हैं। कोसी के सभी पुराने परिच्छेद पुरानी पांडुलिपियों की तरह जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और कुछ तो नष्ट हो गए हैं।
2: कोसी हिम पर्वतमालाओं से उतरकर नेपाल के पर्वतों के बीच बहती, मचलती, उछलती वीरपुर, भीमनगर और

0: सहरसा पूर्णिया के क्षेत्रों को सींचती, 307 किलोमीटर की दूरी तय करती कटिहार जिले के कुरसेला स्थान के पास थोड़ा उत्तर मुड़कर गंगा से संगम करती है, जिसके मध्य में एक बड़ा द्वीप है गोराही दियारा। कोसी संगम के बाएं भाग में पूरब की ओर काढ़ागोला और उसके पूरब कांतनगर है।
1: युगों पूर्व राजा भगीरथ ने जहां अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा नदी को धरती पर उतारा था, वहां पुरुषार्थी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने करोड़ों संतरस्त जनता के कल्याण हेतु कोसी के अभिशाप को वरदान में बदल दिया। कोसी धारा जनजीवन के कल्याण के लिए बहने लगी कोसी धारा।
2: कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी दिव्या पुण्योदकारम्या हिमवंतम उपाश्रिता लोकस्य हितकार्यार्थे प्रवृत्ता भगिनी मम

everybody back.

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

शिव महिमा, महिमा। प्रस्तुत है शिव पुराण एवं अन्य पुराणों और उपनिषदों पर आधारित यह कार्यक्रम शिव महिमा।

देवाधिदेव महादेव की लीला के पिछले प्रकरण में आपने सुना कि दैत्यों के धर्म नाश के पश्चात भगवान शिव शंकर त्रिपुरासुर वध के लिए उद्धत हुए। शंकर रूपी अपने काल को समक्ष देख त्रिपुरासुर तारकाक्ष

विद्युन माली और कमलाक्ष ने उनसे वर मांगा कि वे अपने हर जन्म में महाप्रभु के भक्त बने रहें। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण की। इसके पश्चात उन्होंने अपने एक ही वाण से त्रिपुर और उसके सब वासियों को भस्म कर डाला और ऐसे अंत हुआ दैत्य माता दिति के वंश का।

0: इसके आगे की कथा। रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: महाभाग सूत जी, पिछली भेंट में आपने बताया था कि तारक वंश के विनाश से भी दैत्य अत्याचारों का अंत नहीं हुआ। इस क्रम में अगला महादैत्य जलंधर था।
2: द्विज श्रेष्ठ शौनक जी, जैसा मैंने कहा था, जलंधर की उत्पत्ति का निमित्त स्वयं देवाधिदेव थे।
1: तो सुनाइए ना ये वृत्तांत महाभाग।
2: शौनक जी, त्रिपुरासुर वध के पश्चात जगत कुछ समय के लिए शांत हो गया। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति तथा देवराज इंद्र महामहिम भगवान शिव शंकर के दर्शन हेतु कैलाश पर्वत जा रहे थे। महाप्रभु ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के उद्देश्य से रूप बदल कर उन्हें मार्ग में ही रोक लिया।
3: महापुरुषों, आप कौन हैं? किस उद्देश्य से कैलाश पर विराजे हैं?
4: अरे जटाधारी, क्या तू हमें नहीं पहचानता? हम देवेंद्र हैं और ये हैं ब्रह्म ऋषि देव गुरु बृहस्पति। तू कौन है तथा हमारा मार्ग क्यों रोके बैठा है?
3: मैं तो एक साधारण शिवगण हूँ, कैलाश मार्ग की रक्षा के लिए नियुक्त किया गया हूँ।
4: तो जा अपने स्वामी को सूचना दे कि हम इंद्र उनसे साक्षात्कार के लिए आए हैं। अरे दुर्मति, तू अभी तक बैठा है? जाता क्यों नहीं? मैं तुझे अभी अपने वज्र से प्राणहीन करता हूं।
5: अरे ये क्या, मेरा वज्र धराशाही होकर भूमि पर गिर पड़ा? और ये शिवगण कुपित होकर ये क्या रूप धारण कर रहा है?
6: देवराज, ये तो स्वयं देवाधिदेव हैं। देखिए, इनका तीसरा नेत्र खुल रहा है।
7: क्षमा महाप्रभु, क्षमा। बृहस्पति का दंडवत स्वीकार करें प्रभु, अपनी इस क्रोधाग्नि को रोक लें प्रभु। देवराज से अनजाने में भूल हो गई प्रभु।
3: देव गुरु बृहस्पति, अहंकार के मारे देवताओं को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वे अपने बल के गर्व पर किसी साधारण व्यक्ति को अपमानित करें।
5: भगवान, आप तो सदैव भक्तों पर दया करते हैं, अपने भक्त वत्सल स्वरूप को सार्थक कीजिए प्रभु।
3: मेरा तीसरा नेत्र खुल चुका है इंद्र, मैं अब अपनी इस क्रोधाग्नि का क्या करूं?
7: देव, आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर दीजिए, इंद्र का उद्धार कीजिए प्रभु।
3: गुरु बृहस्पति, हम आपकी बुद्धिमता से प्रसन्न हुए, आपने इस अहंकारी इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं आपको जीवन दाता के नाम से विख्यात करता हूँ और अपने नेत्रों की अग्नि को क्षीर सागर में डालता हूँ।
6: अरे महाप्रभु तो अंतर्धान हो गए। देवादि देव की क्रोधाग्नि क्षीर सागर में पड़ते ही ये कैसा दिव्य बालक प्रकट हुआ है?
7: परंतु कैसा विकराल रुदन है इसका, इससे तो संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो उठा है।
5: हे परम पिता ब्रह्मा, कुछ कीजिए, जगत को इस कर्ण भेदी रुदन से बचाइए, इस बालक का नाश कीजिए।
8: हे समुद्रराज, ये बालक किसका है, क्यों इतना रुदन कर रहा है?
9: हे परमपिता, ये तो ज्ञात नहीं कि ये बालक किसका है, परंतु ये अवश्य जानता हूं कि ये गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है।
8: लाइए, इसे हमारी गोद में दीजिए।
9: ये लीजिए विधात, आप ही इस बालक के जात कर्मादि संस्कार कीजिए।
8: अरे ये क्या कर रहे हो बालक?
6: इंद्रदेव,
8: बालक
6: ने रोते रोते परम पिता की ग्रीवा को हाथों

0: कर लिया है। देव कहो, पीड़ा के कारण ब्रह्मदेव के नेत्रों में अश्रु उमड़ आए हैं।
1: शांत शांत समुद्र पुत्र, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे नेत्रों से जो जल निकला है, इसके कारण मैं इस बालक का नामकरण जलंधर करता हूं। ये उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। ये सभी शास्त्रों का ज्ञाता महापराक्रमी महाधैर्यवान तथा महायोद्धा होगा। मुनिश्रेष्ठ शुक्राचार्य।
2: आज्ञारी गुरु ब्रह्मदेव।
1: शुक्राचार्य, तारक वंश के अंत के पश्चात आप शिष्यहीन हो गए हैं। हम आपको एक महातेजस्वी शिष्य प्रदान करते हैं। आप इन असुर राज जलंधर का राज्याभिषेक कीजिए, फिर कालनेमी असुर की अति सुंदर कन्या वृंदा से इसका विवाह संपन्न करवाइए।
2: परम पिता, आप धन्य हैं। समय समय पर अपने शिष्य शुक्राचार्य को भी आप शिष्य प्रदान करते रहते हैं। आपका प्रस्ताव अति उत्तम है। कालनेमी की पुत्री वृंदा सर्वथा जलंधर के योग्य है। वो पतिव्रता, सौभाग्यशाली तथा शीलवती है।
1: सागर पुत्र जलंधर।
3: आज्ञा देव।
1: हमारा वरदान है, शक्ति में तुम शिव पुत्र कार्तिकेय के समान होंगे। शिव के अतिरिक्त तुम्हारा वध और कोई नहीं कर सकेगा। मृत्यु के पश्चात तुम वहीं लौट जाओगे जहां से उत्पन्न हुए हो।
3: आपके आशीर्वाद से मैं कृतार्थ हुआ परमपिता ब्रह्मा।
4: दैत्य राज जलंधर की जय हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य राजसभा में आने की अनुमति चाहते हैं।
5: मूर्ख सेवक, दैत्य गुरु को किसी भी सभा में आने की अनुमति की आवश्यकता नहीं। उन्हें तुरंत आदर पूर्वक लेकर आओ।
4: जो आज्ञा दैत्यराज।
5: सभासदों, स्मरण रहे, दिति प्रसंग के पश्चात शुक्राचार्य हम असुरों से खिन्न हैं, परंतु हम असुर उनके मार्गदर्शन की अनुपस्थिति में कुछ भी नहीं है। उनके आदर सम्मान में कमी ना रहे।
4: दैत्य गुरु शुक्राचार्य की
6: जय।
4: दैत्य गुरु शुक्राचार्य की
6: जय।
4: दैत्य गुरु शुक्राचार्य की
6: जय।
2: यशस्वी भव दैत्य प्रजा।
3: दैत्य गुरु, यहां हमारे समीप आसन ग्रहण करें। अपने आगमन का उद्देश्य बताएं दैत्य गुरु।
2: वत्स जलंधर, समुद्र मंथन की घटना के सहस्रों वर्षों के पश्चात भी मेरे हृदय को शांति नहीं मिली है।
3: दैत्य गुरु,
2: मेरे प्रिय शिष्य राहु का कटा हुआ शीश आज भी मुझे द्रवित कर देता है। मैं देवताओं से प्रतिशोध लेने को आतुर हो उठता हूं।
3: दैत्य गुरु, दैत्य भ्राता, राहु का शीश क्यों काटा गया?
2: समुद्र मंथन के पश्चात प्राप्त हुआ अमृत देवता पी गए, परंतु फिर भी अमृत शेष रह गया। राहु ने देवता रूप धारण कर उसे पी लिया।
3: क्या, पी लिया? फिर दैत्य गुरु, उन्हें अमृत तो प्राप्त क्यों नहीं हुआ?
2: इंद्र के पक्षपाती विष्णु ने शे देख लिया। इससे पूर्व कि अमृत राहु के गले से उतरकर उसके शरीर में प्रवेश कर जाता, विष्णु ने उसका शीश काट डाला।
3: दैत्य गुरु, आज्ञा करें दैत्य गुरु, देवताओं के इस कुकृत्य का दंड देने के लिए आपके इस शिष्य को क्या करना होगा?
2: दैत्य राज जलंधर, दुष्ट इंद्र को मेरे पूर्व शिष्यों ने

0: अनेक बार इंद्रलोक से बाहर निकाला। इस बार कुछ ऐसा उपाय करो कि परास्त होने के पश्चात इंद्र लौट ना सके। संपूर्ण त्रिलोकी सदा के लिए तुम्हारे अधीन हो जाए।
1: दैत्य गुरु, ऐसा तो मात्र युद्ध से ही संभव है।
0: तो इंद्र से युद्ध करो। तुम्हें ब्रह्मा का वरदान है, शिव के अतिरिक्त तुम्हारा वध कोई नहीं कर सकता। और वत्स जलंधर,
1: आज्ञा दैत्य गुरु।
0: ब्रह्मा ने वृंदा से तुम्हारा विवाह करवाकर बहुत बड़ी भूल कर डाली है।
1: भूल कर डाली? वो कैसी दैत्य गुरु?
0: तुम्हारी पत्नी का सतीत्व अति तेज में है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ा रक्षक सिद्ध होगा।
1: दैत्य गुरु, दैत्य गुरु, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ पाया।
0: वत्स, वैसे तो किसी भी पत्नी का पतिव्रत धर्म उसके पति का बल होता है। वृंदा तो अखंड पतिव्रता है। उसके इस धर्म का भेदन ही तुम्हारी पराजय का कारण बन सकता है। और शिव कभी इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि विजय के लिए किसी स्त्री का शील भंग किया जाए। अतः तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो।
1: आपकी आज्ञा शिरोधार्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुंभ निशुंभ,
2: आज्ञा दैत्य राज।
1: अपनी समस्त सेना इंद्र के नंदनवन में उतार दो, युद्ध होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये हम क्या देख रहे हैं? मरे हुए देवता पुनः कैसे जीवित हो रहे हैं? हमें तो ज्ञात था कि पुनः जिलाने की विद्या मात्र आपके पास है।
0: देवगुरु बृहस्पति त्रोणगिरी पर्वत से औषधियां ला लाकर ऐसा कर रहे हैं।
1: फिर इस युद्ध का अंत कैसे संभव होगा दैत्य गुरु, कैसे संभव होगा? सभी असुर और देवता मर मर कर जी उठेंगे, फिर आपके संजीवनी मंत्र का महत्व ही क्या रह गया?
0: क्रोधित क्यों होते हो? यदि बल है तो द्रोणगिरी पर्वत को ही जड़ से उखाड़ फेंको।
1: बल, बल। देखिए मेरा बल।
3: अरे अरे, ये क्या देव गुरु, जलंधर ने तो द्रोणगिरी पर्वत को ही उखाड़ डाला।
4: हाँ देवराज, और उसे समुद्र में फेंक दिया। अब तो देवताओं को पुनः जीवित कर पाना संभव नहीं है। अब तो पलायन ही उचित होगा।
3: परंतु देव गुरु, हमारे साथ ये क्यों हुआ?
4: स्मरण करो देवराज, तुमने कैलाश यात्रा पर गण रूपी शिव जी का अपमान किया था, ये उसी का फल है।
3: हे महाप्रभु, हे शिव शंकर, क्षमा प्रभु क्षमा। हे विष्णु भगवान, देवताओं का उद्धार कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु।
5: विष्णुदेव, मैं धन्य हुआ, परंतु माते लक्ष्मी, आप इस युद्ध स्थल में?
6: इंद्रदेव, मैं समुद्र मंथन से प्राप्त हुई लक्ष्मी हूं, अतः समुद्र मेरे पिता हैं। जलंधर की भी उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है, अतः वो मेरा भ्राता हुआ। मेरा भ्राता मेरे ही पति द्वारा कैसे मारा जा सकता है?
5: प्रिये,

0: युद्ध अच्छाई और बुराई के मध्य है। इसमें ना कोई भ्राता है, ना पिता, और ना ही कोई अन्य संबंधी है।
1: देव, मैं मात्र इतना जानती हूँ कि मेरे तो आप हैं और एक भ्राता जलंधर है। युद्ध से किसी को भी हानि पहुंचे वो मेरी ही होगी। मैंने जीवन पर्यंत आपसे कुछ नहीं मांगा, आज आपसे भ्राता के प्राणों की भिक्षा मांग रही हूँ।
0: देवी लक्ष्मी, आपने तो हमारे समक्ष बहुत कठिन स्थिति उपस्थित कर दी है। ठीक है, मैं जलंधर को स्वयं नहीं मारूंगा, परंतु देवता मेरे भक्त हैं, इनके आग्रह पर युद्ध अवश्य करूंगा। गरुड़राज, युद्ध स्थल की ओर प्रस्थान किया जाए।
2: देव गुरु बृहस्पति, ये क्या, भगवान विष्णु तक जलंधर से परास्त हो गए?
3: अवश्य ही ये कोई शिवलीला है। भगवान विष्णु तो जलंधर की प्रशंसा कर रहे हैं।
0: दैत्यराज जलंधर,
4: आज्ञा देवीश।
0: तुम धन्य हो जो इस महायुद्ध में इतने भयंकर आयुधों से भी भयभीत नहीं हुए। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। चराचर त्रिलोकी में तुम्हारे समान योद्धा नहीं है। मांगो, वर मांगो।
4: हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर दें। आज से आप मेरी बहन तथा सभी कुटुंबियों सहित मेरे ही लोक में निवास करेंगे।
0: परंतु जलंधर, ये संभव नहीं है। हमारा आसन रिक्त हो जाएगा।
4: देवेश, वहां मैं किसी विष्णु भक्त को आरूढ़ कर दूंगा। आपको मेरा ये आतिथ्य स्वीकार करना ही होगा।
1: देव, कुछ ही समय की तो बात है, अनुज का आग्रह स्वीकार कर लीजिए ना।
0: ठीक है देवी, ऐसा ही होगा जलंधर।
4: देवेश, मैं धन्य हुआ विष्णुदेव, मैं धन्य हुआ।
5: दैत्यों, युद्ध बंद हुआ, प्रस्थान।
2: देव गुरु, ये तो बहुत अनुचित हुआ।
3: हाँ, लेकिन अचानक देवी लक्ष्मी के हृदय में ये भ्राता प्रेम कैसे उमड़ आया?
2: और भगवान विष्णु ने ये बात स्वीकार कैसे कर ली?
3: देवराज इंद्र, महाप्रभु की शरण में जाने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है।
2: हाँ देव गुरु, आप ठीक कहते हैं।
6: नारायण नारायण नारायण,
2: ये तो एक प्रकार से जलंधर विष्णु हरे और देवी लक्ष्मी को अपना बंदी बना कर लेगा।
6: परंतु देवाधिदेव, एक असुर के लिए ये कैसे संभव हो पाया?
7: मुने नारद, किसी भी धर्म परायण व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। और फिर उसने विष्णु जी को बंदी नहीं बनाया है, उनसे अपना आतिथ्य स्वीकार करवाकर अपने धर्म को अतिरिक्त बल प्रदान किया है।
3: परंतु देवाधिदेव, इस प्रकार तो जलंधर देवताओं की बराबरी के स्थान पर जा बैठा है।
7: बृहस्पति जी, आप तो देवगुरु हैं, अपने शिष्यों को आतिथ्य भाव का महत्व बताते रहते हैं। अतिथि सेवा अर्थात पुण्य का भागी बनना।
3: परंतु देवाधिदेव, यदि जलंधर इसी प्रकार अपने पुण्य बढ़ाता रहा तो एक दिन वो सर्वेश्वर बन बैठेगा।
7: ऐसा संभव हो सकता है बृहस्पति जी?

0: और यदि यही होता है तो इस विधि के विधान को टालने वाले हम कौन?
1: अरे महाप्रभु तो बिना कुछ उपाय बताए ही अंतर्धान हो गए। मुने नारद,
2: कहिए देव गुरु बृहस्पति।
1: नारद, आपने अनेक विकट समयों पर देवताओं का उद्धार किया है। संभवतः महाप्रभु इसीलिए अंतर्धान हुए हो कि इस बार भी आप ही देव कल्याण का उपाय सोचें।
2: नारायण नारायण, कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है देव गुरु बृहस्पति। विष्णु भक्त नारद को अपने स्वामी को दैत्य जलंधर कारागार से मुक्ति तो दिलानी ही होगी। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, दैत्य राज जलंधर की जय हो।
0: अरे ब्रह्मर्षि नारद, आप हमारी जय जयकार कर रहे हैं।
2: असुर श्रेष्ठ जलंधर जो जय जयकार के योग्य हो उसकी जय जयकार तो करनी ही पड़ती है। मेरे प्रभु द्वारा आपका आतिथ्य स्वीकार करते ही आप मेरे भी तो पूज्य हो गए हैं।
0: आइए विराजिए, यहाँ हमारे समीप आसन ग्रहण कीजिए।
2: नारायण नारायण।
0: नारद मुनि, ये चारों ओर आप क्या देख रहे हैं?
2: आपका वैभव देख रहा हूं दैत्यराज। मैं तो समझता था कि कैलाशपति शिव से अधिक वैभवशाली इस पूरी सृष्टि में कोई नहीं। सहस्रों योजन तक फैले कल्प वृक्ष वन, सहस्रों काम धेनु, स्वयं जटाओं में चंद्रमा धारण किए भोलेनाथ। परंतु
0: क्या मुने,
2: यहां आकर तो मुझे अपना विचार त्यागना पड़ा है।
0: हैं?
2: नारायण नारायण, क्या नहीं है आपके पास?
0: नारद मुने,
2: ऐरावत हाथी, उच्चै श्रुवा, अश्व, ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान, इंद्रलोक, पाताल, पृथ्वी लोक के समस्त रत्न। जलंधर, आप तो सभी के स्वामी हो, स्वामी। परंतु
0: अब परंतु कैसा मुनिवर,
2: आपके पास स्त्री रत्न नहीं है।
0: स्त्री रत्न? महामुने, काल नेमी असुर की अति सुंदर पुत्री वृंदा मेरी पत्नी है।
2: अवश्य है अवश्य है। दैत्यराज, आपके पास सब कुछ ऐसा है जो देवाधि देव से उत्तम है। परंतु क्षमा करें, देवी वृंदा शिव पत्नी सर्वांग सुंदरी पार्वती के समक्ष उनकी भी आभा फीकी पड़ती है।
0: क्या?
2: मेरे विचार से तो पार्वती जैसा स्त्री रत्न योगी शिव के योग्य नहीं है।
0: भाई, उसे तो आपकी शोभा बनना चाहिए। परंतु मुने,
2: किंतु परंतु कैसा असुराज, जब तुम्हारा बल देख स्वयं नारायण तुम्हारे लोक में वास करने लगे हैं तो क्या मांगने पर शिव तुम्हें पार्वती नहीं दे देंगे? विष्णु जी के यहां आने से वैसे ही उनकी शक्ति क्षीण पड़ चुकी है।
0: मुने नारद, क्या ऐसा संभव है? क्या मैं उस अति सुंदर नारी पार्वती को ग्रहण कर सकता हूं?
2: नारायण नारायण, कर सकते हो अथवा नहीं, ये तो समय ही बताएगा। परंतु ये

0: तुम्हारी भुजाओं में बल है, तो प्रयास तो तुम्हें अवश्य करना चाहिए। पार्वती तुम्हारे अंक शायनी हो जाए तो
1: होंगी होंगी मुने नारद, अवश्य होंगी।
2: दूत राहु, आज्ञा दैत्यराज, जाओ योगी शिव से हमारे हृदय की इच्छा व्यक्त करो और पार्वती को अपने साथ लेकर आओ।
1: उसका सौंदर्य वर्णन सुनकर हम क्षण भर भी उसके बिना नहीं रह सकते।
2: जाओ, तुरंत अपने साथ लेकर आओ। जाओ।
3: जो आज्ञा।
0: नारायण नारायण नारायण।
4: और परम ज्ञानी शौनक जी, इस प्रकार उस महादैत्य की बुद्धि भ्रष्ट कर नारद मुनि प्रसन्नता से लौट गए।
5: अर्थात महाभाग सूत जी, जिस धर्म आचरण के बल पर असुर राज जलंधर इतना पराक्रमी और बलशाली बना था, नारद मुनि ने अपने चतुर वाक वाणों से उसे ही भेद डाला।
4: हाँ शौनक जी, यदि प्रवृत्तियां इतनी सरलता से बदल जाती होती तो क्या सभी मानव और असुर देवता न बन गए होते? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी प्राणियों के भीतर दबी प्रवृत्तियां सर उठाती ही हैं और उनके नाश का कारण बनती हैं।
5: तो जलंधर के हृदय में जागी इस आसुरी प्रवृत्ति ने उसका कैसे नाश किया महाभाग?
4: ये जानने के लिए तो आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी शौनक जी।
6: श्रोताओं, शिव महिमा के आज के प्रकरण में हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड के 13वें और 14वें अध्याय से प्रसंग लिया था।

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

गंगा पार होने के पश्चात भगवान प्रसन्न भाव से केवट को विदा कर भारद्वाज आश्रम संगम नगरी पहुंचते हैं, जहां राम सीता लक्ष्मण व भक्तगण स्नान ध्यान पूजन भजन और कीर्तन कर रहे हैं।

भरद्वाज आश्रम से भगवान चित्रकूट पहुंचते हैं, जहां कुछ आदिवासी स्त्रियां मिलती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता जी लजाकर कुछ इस तरह कह उठती हैं।

0: मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज प्रस्तुत है इस विशेष नाटक की छठी कड़ी।

0: குந்தேந்தீவர சுந்தராவதி பலௌ விஜயான தாமா உபௌ சோபாட்யௌ வரதன்வினௌ ஸ்ருதினுதௌ கோவிப்ரபிருந்த பிரியௌ மாயா மானுஷ ரூபிணௌ ரகுவரௌ சத்தர்ம வரமௌ ஹிதௌ சீதான்வேஷண தத்பரௌ பதிகதௌ பக்தி பிரதௌ தௌ ஹினா। सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हुए श्री राम जी ऋष्यमूह पर्वत पहुंचे। वहां सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। महापराक्रमी राम और लक्ष्मण को आते देखकर सुग्रीव पहले तो चिंतित हुए कि कहीं बाली ने ही तो इन्हें नहीं भेज दिया है। फिर विचार कर हनुमान जी को सारी स्थिति की जानकारी के लिए भेजा। हनुमान जी ब्रह्मचारी का रूप धारण कर श्री राम जी के निकट पहुंचे।
1: भद्र पुरुषों की सेवा में मेरा प्रणाम।
2: प्रणाम।
1: कूतुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरहु बनबीरा कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेत बिचरहु बन स्वामी। कहीं आप ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीन देवताओं में से तो नहीं है, या फिर आप नर और नारायण हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनोज अवतार।
2: वीरवर कोसलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुख मारी सुहाई। पंचवटी से किसी राक्षस ने सीता का अपहरण कर लिया है। हम दोनों उन्हें खोज रहे हैं, बस यही हमारी गाथा है। अब आप भी तो अपना परिचय दीजिए।
1: स्वामी, मेरा आपसे परिचय पूछना तो न्याय संगत था। मैंने वर्षों बाद आपको देखा है, वो भी तपस्वी के वेश में। अपनी बानरी बुद्धि के अनुसार मैं आपको पहचान नहीं सका, परंतु आप तो सर्वज्ञ हैं। फिर तुम पूछो कस नर की नाई, तब माया बस फिरहु भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान।
2: हनुमान, हनुमान,
1: मानता हूं प्रभु मैं अवगुणों की खान हूं, किंतु आप मुझको भूल जाए। स्वामी, मैं मानता हूं हर जीव आपकी माया से मोहित है, आपकी कृपा से ही भव सागर से पार हो सकता है। फिर प्रभु मैं तो भजन उपाय कुछ भी नहीं जानता। जिस तरह पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है, उसी तरह सेवक स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है।
2: हनुमान, हनुमान उठो, मेरे हृदय से लग जाओ।
3: तात, आपके नेत्रों में अश्रुकण।
2: यह अश्रुकण नहीं लक्ष्मण, यह हनुमान से मिलने का उल्लास है। अपने मन में ग्लानी मत लाओ कभी, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो।
3: सब आपको समदर्शी कहते हैं, आपके लिए ना कोई प्रिय है ना प्रिय है।
2: पर मुझे सेवक प्रिय है, क्योंकि मुझको छोड़कर उनका कोई और सहारा नहीं होता।

0: सो अनन्य जाकें असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत।
1: नाथ सैल पर कपिपत रहई, सो सुग्रीव दास तब आई, तेही सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेही अभय करीजे। सो सीता कर खोज करा इह, जहां ता मरकट कोट पठा इह।
2: इस प्रकार हनुमान ने श्री राम जी को सुग्रीव की कथा समझाई, फिर दोनों भाइयों को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण को इस प्रकार हनुमान के साथ आते देखा तो अपने जन्म को धन्य समझा। मन में सोचने लगा, हे विधाता, क्या ये मुझसे स्नेह करेंगे? उनके आते ही सुग्रीव ने उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। राम ने उन्हें कंठ से लगा लिया। तब हनुमान ने उन दोनों को एक दूसरे की गाथा सुनाकर, अग्नि की साक्षी कर, उन दोनों में मित्रता करवाई। कीनी प्रीत कछु बीच न राखा, लक्ष्मण रामचरित सब भाखा।
3: वानरराज, मेरे भाई महापराक्रमी राम है। हम दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। राम के शौर्य से संपूर्ण वन राक्षस विहीन हो चुका है। खर, दूषण, त्रिशरा और कबंध जैसे महाबली राक्षस राम के हाथों मारे जा चुके हैं। इस पर खींचकर राक्षस राज रावण ने सीता जी का अपहरण किया है। हम उन्हें ही खोजते हुए यहां तक पहुंचे हैं।
4: देव, आप लोग चिंता न करें, सीता जी आपको मिल जाएंगी। एक बार मैं यहां बैठा हुआ अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर रहा था। गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें ही देख दीने पट डारी।
5: वो वस्त्र मुझे दिखाओ सुग्रीव, अभी लो प्रभु।
4: ये लीजिए प्रभु।
5: वही है, सीता के ही वस्त्र हैं प्रभु।
4: आप चिंता न करें, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। मैं वो हर संभव उपाय करूंगा जिससे सीता जी आपको मिल जाएं।
5: मुझे तुम पर विश्वास है सुग्रीव। अब एक बात बताओ सखा, तुम इस प्रकार वन में क्यों रह रहे हो?
4: स्वामी, मैं और बाली दो भाई हैं। कभी हम दोनों में ऐसा स्नेह था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक बार की गाथा है, मैं दानव का महाबली पुत्र मायावी हमारे नगर में आया और आधी रात के समय ऊंचे स्वर में बाली को ललकारने लगा। बाली शत्रु की ललकार कैसे सहन कर सकता था? बाली हुंकार कर उसके पीछे भागा। मैं भी ये सब देख भाई के साथ साथ चला।
6: दुष्ट मायावी, ठहर, मैं तुझे तेरी ललकार का प्रत्युत्तर दूंगा। सुग्रीव।
5: हाँ भैया।
6: तुम देख रहे हो, मायावी इस पर्वत की गुफा में घुस गया है। तुम एक पखवाड़े तक यही मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 15 दिन तक लौट कर नहीं आ सका तो समझ लेना मेरी मृत्यु हो चुकी है।
5: भैया, ये आप क्या कह रहे हैं?
6: मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं गुफा भी जाकर इससे युद्ध करूंगा।
4: मैं वहां 1 मास तक रहा। तब एक दिन मैंने देखा गुफा से खून की बड़ी धारा बह निकली है। मायावी ने बाली को मार दिया है और मुझको आकर मार देगा, क्योंकि मैं बाली से अधिक बली नहीं हूं। ये सोच मैं गुफा के द्वार पर विशाल शिलाखंड लगाकर लौट आया। मंत्रियों ने राजधानी को बिना स्वामी के देखा। मेरी इच्छा ना होने पर भी उन्होंने मुझे राजा बना दिया।
5: चुप क्यों हो गए सुग्रीव, बोलते क्यों नहीं?
4: कुछ दिनों बाद बाली शत्रु को मारकर घर लौटा। आश्चर्य तो यह था प्रभु कि उसके हृदय में मेरे प्रत्येक शत्रु के समान रोष था। विपु सम मोही मारे से अति भारी, हरि लीने से सर्वसु अरिनारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला।

0: यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही।
1: सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाल ही एक ही बान, ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न उपरे ही प्राण। मैंने तुम्हें अपना मित्र माना है, सिद्धांत कहता है जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरिसम रज करी जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। जिनके असीमति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। अत सका सुग्रीव, मेरे बल पर अब तुम अपनी चिंता छोड़ दो, मैं हर प्रकार तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा।
0: देव, बाली महाबली और अत्यंत रणधीर है, देखिए वो दुंधवी राक्षस की अस्थियों का समूह है, ताड़ के वृक्ष हैं। ऐसी बात प्रचलित है कि जो इनका विनाश कर सकेगा उसी के द्वारा बालीवध होगा।
1: तो लो, मैं इन्हें एक ही बाण से नष्ट किए देता हूं।
0: आश्चर्य, एक ही बाण ने यह चमत्कार कर दिखाया। मुझको विश्वास हो गया कि आप निश्चित वाली का वध करेंगे।
1: निश्चिंत रहो सुग्रीव, मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा।
0: वाली तो मेरा उपकारी है, जिसकी कृपा से दुखों का नाश करने वाले आप मुझे मिले। नहीं प्रभु, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। सुख संपत्ति परिवार और अहम का त्याग कर मैं आपकी सेवा करूंगा। मुझे वरदान दीजिए कि मैं सब कुछ त्याग कर दिन रात आपका भजन करूं।
1: ऐसा ही होगा, मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं होते। बाली मारा जाएगा और तुम किष्किंधापति बनोगे। उठो सखा, यह वैराग्य की वाणी छोड़ो और बाली से युद्ध करने को तत्पर हो जाओ। आओ मेरे साथ।
2: बाली, बाली, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं, शक्ति है तो आकर मुझसे युद्ध करो।
3: आज सुग्रीव को क्या हो गया, कहीं भांग तो नहीं खा गया?
2: ठहर, मैं अभी तेरी खबर लेता हूं।
4: स्वामी, स्वामी, पहले मेरी एक बात सुनिए।
3: क्या है?
4: ये सुग्रीव नहीं गरज रहा, ये राम और लक्ष्मण की शक्ति गरज रही है। सुनो पति, जिन्हें मिले हो सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीमा, कोसले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा।
3: भीरु प्रिय, राम समदर्शी हैं, यदि वे मुझे मारेंगे तब भी मुझको परम पद प्राप्त होगा।
0: दुहाई है प्रभु, आपकी दुहाई। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं, मेरा काल है।
3: मैं भी विवश था सुग्रीव, तुम दोनों भाई समान रूप के हो। मैं भ्रम में पड़ गया, सोचा कहीं बाली के धोखे में तुम ही ना मारे जाओ। लो, ये पुष्पमाला धारण करो ताकि मुझको तुम्हारी पहचान रहे। जाओ, निश्चिंत होकर युद्ध करो।
5: की रक्षा के लिए हुआ है, इस पर भी आपने पेड़ की ओट में छिपकर व्याध की भांति मुझे मारा। मैं पहले सुग्रीव प्यारा, अब कुन कमरनाथ मैं मारा।
3: अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम एचारी, इनही कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताही बने कछु पाप न हुई। मोढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करसी न काना। मम भुजबल आश्रित तेहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी।
5: स्वामी, स्वामी, आपसे मैं चतुराई में नहीं जीत सकता।

0: अंतकाल में आपकी गति पाकर भी मैं पापी ही रहा।
1: सुनो बाली, मैं तुम्हारी देह को अचल करता हूं, तुम अपने प्राणों की रक्षा करो।
0: नहीं नहीं कृपाने धार रही मुनिगण, जन्म जन्मांतर यत्न करने पर भी जिस गति को प्राप्त नहीं होते वो मुझको सहज में ही मिल गई है। चाहने पर भी अंत समय लोग राम नाम नहीं ले पाते और मेरे सम्मुख तो साकार राम खड़े हैं। ऐसा संयोग क्या फिर आएगा। सो नयन गोचर जा सुकुन नित नेति कहीं श्रुति का वही, जित पवन मन को निरस कर मुन ध्यान कबूक पावही। वही जानी अति अभिमान बस प्रभु कहू राखु शरीर ही, अस कबन सट हट काटी सुर तरु बारी कर ही बबू रही। अब नाथ करी करुणा विलो कहू देहु जो वर मांगहू, जही जोनी जन्मों कर्म बस तह राम पद अनुराग हूँ। प्रभु देवताओं और मनुष्यों के नाथ ये मेरा पुत्र अंगद है। बल पराक्रम और विनय में मेरे ही समान है, इसकी बाह पकड़कर आप इसे अपना दास बनाइए, इसे आश्रय दीजिए।
1: तथास्तु।
2: स्वामी, मैं तो आपको पहले ही समझा रही थी पर आपने मेरी बात न मानी।
3: पिता, तुम्हारे बिना अब हमारा सहारा कौन बनेगा।
1: देवी तारा, धैर्य से काम लो। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन्हीं पांच तत्वों से यह अथम शरीर रचा गया है। वो शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। जीव तो नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो।
2: प्रभु, मुझको अपनी परम भक्ति का वरदान दो।
1: निश्चित देवी। सखा सुग्रीव, बाली तुम्हारे अग्रस्त है, विधिवत इनका दाह संस्कार करो। और लक्ष्मण, तत्पश्चात तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव को राजपद और अंगद को युवराजपद से सुशोभित करो।
4: रघुपति की प्रेरणा से सब लोग उन्हें प्रणाम करके विदा हुए, सभी कार्य विधिवत हुए। तब लक्ष्मण जी ने सब नगरवासियों और ब्राह्मणों के समाज को बुलाकर उनके सम्मुख सुग्रीव को राज्य दिया और अंगद को युवराज बनाया। अब ग्रीष्म बीतकर वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी। वर्षा काल बिताने के लिए श्री राम जी प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके।

0: का मन कुछ उद्विग्न लग रहा है।
1: प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और उसके गूढ़ रहस्य में खो गया है मन। इस वर्षा ऋतु को देखकर अनेक विचार मेरे मन में उठ रहे हैं।
0: मैं आपकी व्यथा को समझता हूँ तात। हमारे वनवास काल में जितनी बार वर्षा ऋतु आई है, जानकी जी साथ रही हैं। इस बार उनकी अनुपस्थिति आपको व्याकुल किए हुए है।
1: तुम ठीक कहते हो तात। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन दर्पत मन बोरा। उधर देखो लक्ष्मण, जैसे विद्वान विद्या पाकर नम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार बादल पृथ्वी के पास आकर बरस रहे हैं। पर्वत बूंदों के आघात को इस प्रकार सह रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के वचनों को सहते हैं। छोटी छोटी नदियां किनारे तोड़कर इतराती हुई चल रही हैं जैसे क्षुद्र लोग थोड़ा सा धन पाते ही मर्यादा तोड़कर प्राण लेते हैं।

0: लक्ष्मण, वर्षा ऋतु बीत गई और परम सुहावनी शरद ऋतु आ गई है, किंतु
1: किंतु क्या दात, आप चुप क्यों हो गए?
0: लक्ष्मण, अभी तक सीता के विषय में कोई समाचार नहीं मिला। एक बार कैसे भी उसका समाचार प्राप्त हो जाए तो राक्षस राज्य क्या काल को भी जीतकर मैं उसे ला सकता हूं। यदि वह कहीं भी जीवित हुई तो मैं इसे यत्न करके अवश्य लाऊंगा।
1: तात,
0: सुग्रीव हूं सुधी मोरी बिसारी, बाबा राजकुस पुरनारी। जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतों मूड़ कह काली।
1: बहुत दिनों बाद आज धनुष पर पांव चढ़ाने का अवसर मिला है। मर्यादा पुरुषोत्तम, आप शुभ ना हो, मैं अभी किष्किंधा जाकर सुग्रीव की बुद्धि ठिकाने लगाता हूं।
0: वहां जाकर कोई अनिष्ट न कर देना लक्ष्मण, केवल भय दिखाकर सखा सुग्रीव को यहां ले आओ।
2: जिनकी कृपा से मद और मोह छूटते हैं, ऐसे श्री राम जी को कभी स्वप्न में भी क्रोध आ सकता है? ये क्रोध तो केवल लीला मात्र है। ज्ञानी ऋषि जिन्होंने प्रभु के चरणों में प्रीति लगा रखी है, वे ही इस लीला के रहस्य को जानते हैं। इधर किष्कंधा में हनुमान मन ही मन सोचने लगे, श्री राम जी के कार्य को सुग्रीव तो भूल ही गए हैं। उन्होंने जाकर सुग्रीव को स्मरण कराया। सुग्रीव ने कहा, वास्तव में ही हनुमान, ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। विषय वासना ने मेरी बुद्धि का हरण कर लिया है। ऐसा करो पवन पुत्र, जहां जहां वानरों के समूह रहते हैं वहां वहां दूतों को शीघ्र भेजो और कहलवा दो कि 15 दिनों में जो नहीं आएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यही अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाए।
1: कहा है सुग्रीव, उन्हें शीघ्र बुलाओ, नहीं तो मैं पूरे नगर को जलाकर राख कर दूंगा।
3: मैं युवराज अंगद प्रणाम करता हूं देव, हम लोगों को अभयदान दें, हमारे अपराध को क्षमा करें।
1: डरो मत अंगद।
4: हनुमान, हनुमान।
5: आज्ञा महाराज।
4: देवी तारा को साथ ले जाकर लक्ष्मण जी को समझाओ, उनके

0: शांत करो।
1: हम उन्हें अभिभवन में लेकर आते हैं महाराज। मैं प्रणाम करती हूँ भगवान।
2: मेरा भी प्रणाम स्वीकारें देव, हमें आशीष दें।
3: मेरा आशीष सदैव आप लोगों के साथ है।
1: आइए प्रभु, राजभवन को अपने चरणों से पवित्र कीजिए।
0: मुझको अपनी भूल का पश्चाताप है देव।
3: उठो वानरराज, मेरे कंठ से लग जाओ।
0: हे नाथ, विषय के समान कोई मत नहीं है। मैं तो साधारण जीव हूं, जबकि ऋषियों तक के मन में ये मोह उत्पन्न कर देता है।
2: लक्ष्मण जी, हमने सब दिशाओं में बानर यूथ बुलाने के लिए दूत भेजे हैं।
3: ठीक है, आओ अब श्री राम जी के पास चले।
4: हरखे चले सुग्रीव, तब अंगद आदि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जय रघुनाथ। श्री राम सुग्रीव आदि के बीच जानकी जी की खोज के लिए बातें होने लगी। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिसि देखिए कीस बरूत। तब सुग्रीव की आज्ञा पाकर सब बानर योद्धा जहां तहां खड़े हो गए। सुग्रीव ने उन्हें सारी बातें समझाते हुए कहा।
5: शांत हो जाओ, सब शांत होकर सुनो। वानर वीरो, सीता जी की खोज के लिए आपको यहां बुलाया गया है। ये भगवान राम का कार्य है। मेरा अनुरोध है आप सब लोग सीता जी को जाकर खोजो। इसके लिए एक मास की अवधि है। जो बिना सुध लिए अवधि समाप्त करके लौटेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा।
6: भगवान राम की जय! भगवान राम की जय! बानर राम सुग्रीव की जय! बानर राम सुग्रीव की जय! बानर राम सुग्रीव की जय!
5: सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुध पूछे सब काहू, मन क्रम वचन सो जतन विचार, रामचंद्र कर काज सवार।
7: यह मेरी मुद्रिका है हनुमान, यह सीता को देना, उन्हें सब प्रकार से समझाना, मेरे विरह प्रेम शक्ति सबके विषय में उन्हें बताना और शीघ्र लौटना।
4: हनुमत जन्म धन्य करी जाना, चलेउ हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। श्री राम जी से आज्ञा लेकर ये वानर योद्धा सीता जी की खोज में आगे बढ़े।

0: सबने उस तपस्विनी को प्रणाम किया, अपना वृत्तांत सुनाया, उससे आज्ञा लेकर जी भर स्नान किया, वाटिका से मधुर फल तोड़ तोड़ कर खाए, थोड़ी देर आराम किया। तब तपस्विनी ने इन्हें अपनी कथा सुनाई और कहा, मैं तो अब वहां जा रही हूं जहां भगवान रामचंद्र हैं, उनसे उनकी अनपायनी भक्ति पाकर बद्रिकाश्रम चली जाऊंगी। तुम लोग इस विवर से निकलकर आंखें मूंदना, आंखें मूंदते ही सिंधु तट पहुंच जाओगे।
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। अवधि समाप्त हो चुकी है और काम कुछ भी नहीं हुआ।
2: दोनों प्रकार से अब तो मृत्यु दिख रही है। इधर सीता जी का पता नहीं लग रहा, कब तक इन पनों में भटकते रहेंगे। किष्किंधा लौटे तो बानर राज हमारा वध कर देंगे। मेरा वध तो वो मेरे पिता की मृत्यु के साथ ही करते थे। भगवान श्री राम ने मेरी रक्षा कर ली। सुग्रीव का मुझ पर कोई एहसान नहीं है। अब मुझको तो अपनी मृत्यु में कोई संदेह नहीं दिख रहा।
1: सुनो युवराज, तुम्हारे कारण सभी अधीर हो रहे हैं, सभी की आंखों में पानी है। ये हम सबका निर्णय है, हम सीता जी की सूचना लिए बिना किष्किंधा नहीं लौटेंगे।
3: आओ लवण सागर के तट की ओर चलते हैं।
1: यहां कुशा बिछा कर थोड़ी देर विश्राम करें।

0: कितना जटायु का बड़ा भाई संपाति तो नहीं?
1: मेरा विचार है वही है।
2: आज सब ही कह पर जानकारा हूँ चले आहार बिन मर सब ने मिल भरी उधर आहारा आज दीन विधि एक ही वारा।
3: अब तो साकार मृत्यु सामने खड़ी हुई है,
0: इससे निपट लेंगे। सोचने की क्या बात है,
3: वास्तव में किथरा जटायु के समान कोई धन्य नहीं हो सकता। ये परम भाग्यवान है जो भगवान राम की काज अपने प्राण त्याग कर परम धाम।
2: सुनो बंधु, मुझे समुद्र के तट तक ले चलो, मैं जटायु को
4: मैं तुम्हें सीता जी के बारे में बताऊं।

सुनो वानर वीरों, मैं और जटायु बचपन से ही महत्वाकांक्षी थे। यौवनावस्था में मैं और वो सूर्य तक पहुंचने की आकांक्षा में उड़े। सूर्य की अपार

को सहन न कर सकने के कारण वो तो पथ से ही लौट आया, पर मैं दम भी उड़ता ही चला गया। रवि के निकट पहुंच गया, सूर्य के अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं घोर चीत कर किस

0: चंद्रमा नामक ऋषि को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने मेरा उपचार किया, अपने ज्ञान द्वारा मेरे दंभ को नष्ट किया। उन्होंने ही मुझको बताया था कि त्रेता युग में भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे। राक्षसपति उनकी पत्नी सीता का हरण करेंगे। सीता की खोज में प्रभु अपने दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तेरे दुख दूर हो जाएंगे, तेरे पंख हो जाएंगे। तू उन्हें सीता दिखा देना। आज ऋषि की वाणी सत्य हुई है।
1: सीता जी कहाँ है?
0: हाँ, देखो उधर, देखो उधर, त्रिकूट पर्वत पर लंका वसी हुई है। वहां रावण निडर होकर राज्य करता है। उसी की अशोक वाटिका में सीता जी विचार मग्न बैठी है। मैं उनको देख रहा हूँ, मैं देखा हूँ, तुम नहीं। गीधे दृष्टि अपार, बूढ़ भय उन्नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हार। तुमसे जो भी शतयोजन समुद्र पार कर जाएगा, उसे ही भगवान का कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दृढ़ता से काम लो, राम को हृदय में धारण करो। देखो देखो, प्रभु कृपा से मेरा शरीर कैसा हो गया है, पंख उगाए हैं। कायरता छोड़, लंका पहुंचने का कोई उपाय करो। अच्छा अच्छा, मैं चलूंगा।
1: बूढ़ा हो चुका हूं, अब शरीर में तरुणाई का लेश मात्र भी नहीं रहा। जब भगवान राम ने वामनावतार लिया था, तब मेरे शरीर में अपार शक्ति थी। बलि को बांधते समय प्रभु ने अपनी देह इतनी बढ़ाई कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पर मैंने दो घड़ी में ही दौड़कर प्रभु के उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली थी।
2: मैं समुद्र पार तो जा सकता हूं, किंतु लौटने के बारे में मेरे मन में कुछ संदेह है।
1: तुम सब कुछ कर सकने में समर्थ हो, किंतु तुम हमारे नायक हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं? हनुमान, हनुमान, महाबली, तुम चुप क्यों बैठे हो? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम्हारे लिए कठिन है, जिसे तुम नहीं कर सकते? भगवान श्री राम का कार्य पूरा करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है।
2: हनुमान जी का ये अद्भुत रूप है, लगता है जैसे साक्षात सुमेरु पर्वत हो।
3: मैं इस समुद्र को खेल खेल में ही पार कर जाऊंगा। मैं सहायकों समेत रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यहां ला सकता हूं।
4: जामवंत, मैं पूछूं तोई, उचित सिखावन तीन जब मोई।
1: तुमने हम सबको उबार लिया है तात, बस तुम इतना ही करो, सीता जी को देख और उनके समाचार लेकर लौट आओ। उसके उपरांत कमल जैसे नेत्रों वाले श्री राम राक्षसों का संहार करेंगे। कौतुक के लिए वानर सेना भी साथ होगी।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। ये कौन है लुटेरे जो दिन रात हम सबको लूटा करते हैं और हम इन सबको प्रसन्न रखते हैं, खिलाते पिलाते रहते हैं, ये हमको लूटते रहते हैं। तो इन्हें पहचानिए, इनसे दूर रहिए, नहीं तो सब

और हमारे आपके जीवन में, सबके जीवन में बचपन से लेके बढ़ापे तक जो होता है, जो गुजरता है, वो इन चार पंक्तियों में उतार दिया गया।

और जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं। इनको मैं एक ही शर्त पर बंबई से यहां तक लेके आया हूं कि ठीक नहीं बजाएंगे तो यहां छोड़ के चला जाऊंगा। तो जरा ध्यान से सुने, फिर

पीयूष पवार जी संगत कर रहे हैं। अब इनका विशेष कमाल देखिए, मैं जो सरगम

बंबई वापस ले जा रहा हूं। इनका एक लड़का है 6 साल का, वो भी बहुत अच्छा संतूर बजाता है और अपने स्कूल में, स्कूल के फंक्शंस में संतूर बजा के सुनाता है तो सब उसे बहुत प्यार करते हैं। तो एक बार उसके टीचर ने पूछा, बेटा बहुत अच्छा संतूर बजाते हो, तुम्हारे घर में और भी कोई संतूर बजाता है? तो उसने कहा, हाँ और लोग अभी सीख रहे हैं। फिर टीचर ने पूछा, बेटा तुम लोग कितने भाई बहन हो? तो उसने कहा, हम लोग 14 भाई बहन, 8 भाई हैं, 6 बहनें। तो टीचर ने कहा, सच में? कहता, हाँ जी सच में। फिर टीचर ने पूछा, बेटा तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? उसने कहा, वो यही काम करते हैं। क्योंकि टाइम मिलेगा तो और कुछ करेंगे।

सुनना बड़े पुण्य का काम है आप लोग कर रहे हैं, और भगवान का भजन गाना उससे ज्यादा पुण्य का काम है। तो कितना अच्छा हो आप भी गाइए, हम भी गाएं, सब मिलकर ये पुण्य कमाएं। तैयार हो जाइए, पहले मैं गाऊंगा आप सुनिए, फिर आप गाइए मैं सुनूंगा।

अयोध्या में हर्ष और उल्लास के साथ श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गईं, परंतु विधि का विधान कुछ और था। राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 3 मांगे पूरी करने का वचन दिया था। विधि की प्रेरणा से माता कैकेयी ने राम के 14 वर्ष वनवास की मांग की। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचनु न जाई। और पिता के वचन को निभाने के लिए राम जी चले वनवास।